0: the part of the big weekender. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: Millennials unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।

0: वेलकम टू मिलेनियल वीकेंडर ऑन बिग 106.2। मैं हूं शिरन आपके साथ और आज के शो पर पिछले से पिछले वाले शो की तरह हम बातें करेंगे मिलेनियल चीज़ों की, नॉस्टैल्जिक चीज़ों की। तो उज्जवल, क्या आपने बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोली थी उससे रिलेट की?
1: पहले तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप माइक संभाल रहे हो और मैं पैसिवली बात कर रहा हूं।
0: I know, तो थोड़ा स्ट्रेस भी है, बट मैं स्ट्रेस को थोड़ा साइड में रख के जो है ना बॉस सामने बैठा हो तो क्या हो सकता है।
1: नहीं, यू डू अ फाइन जॉब। आई मीन इट्स नॉट लाइक नासा से हम कोई थोड़ा ना स्पेस शटल उड़ा रहे हैं यहां पे। इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रॉपर कन्वर्सेशन। एंड जहां तक तुमने मिलेनियल वीकेंडर की बात करी, मिलेनियल चीजों में भी ऐसी बहुत बड़ी टाइप होता था ना कि जब आपको जिम्मेदारी मिल जाती थी, जबरदस्ती दे दी जाती थी कि अब तेरा काम है, तू कर। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी मिलेनियल्स हैव ब्रॉट अप।
0: यस,
1: और इसलिए हम सख्त भी हैं थोड़े से।
0: बट एक बात बताऊं, उस वजह से हम लोगों में एंड्योरेंस, रेजिलियंस बहुत ज्यादा है, जो कि आजकल के नाजुक जनरेशंस में इतना दिखाई नहीं देता है। वेल, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, बहुत सारे स्ट्रांग लोग उनमें भी होते हैं। बट एनीवेज, इसी टॉपिक पे बात करते हुए मैं बोलना चाहूंगी, बीटिंग्स फ्रॉम टीचर्स। बीटिंग्स फ्रॉम टीचर्स जो है, आपको कभी पड़ी है?
1: हाँ, मतलब वहाँ पे भी मैंने जिम्मेदारी ले ली थी अपने दोस्तों की।
0: ओह रियली?
1: बहुत बारी, बिकॉज आई हैड अ वेरी टाइट क्लोज नेट स्कूल सर्कल, और वो जो दोस्त हैं वो मेरे साथ अभी भी हैं। सो इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट, 25 इयर्स नाउ।
0: या आई नो, वाओ,
1: दे स्टिल विद मी। तो हां, काफी पड़ी है।
0: हां, तो कैसे कैसे पनिशमेंट्स मिलते थे? जैसे हम लोगों को जो है पनिशमेंट्स जो मिलते थे, दैट यूज्ड टू बी मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, क्लास के बाहर निकल जाओ, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो ये सब पनिशमेंट्स मिलती थी। और फाइनल जो ट्रम्प कार्ड होता था, पेरेंट्स को बुला के लाओ।
1: हां यार, ये मतलब आई थिंक ये यूनिवर्सल स्कूल लैंग्वेज होती थी हर स्कूलों में। एंड आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, एक बार and I was used to play basketball, तो एक बार हम basketball खेल कर ही निकल रहे थे, before the school only, तो हम जब निकल रहे थे तो हमारी biology teacher ने हमें देख लिया था कि ये school तो start होने का time है, ये निकल क्यों रहे, क्योंकि हमने सिर्फ एक घंटा खेला और हम निकल रहे थे क्योंकि हमें bunk मारने का program था हमारा। And then she happened to see us and then she called us as, और उसके बाद बहुत बढ़िया स्वागत हुआ हमारा।
0: पता है usual आपको देख के लगता नहीं कि आप bunk करने वाले में से।
1: You don't know me.
0: All right, आप लोग भी मुझे बताइए, do you relate to such things? क्या आपको कभी punishments मिली हैं? आप लोग मुझे जो है Instagram पे tag कर सकते हो, hustler_shirin। Keep listening to Millennial Weekender Big 106.2 पर, and this show starts from 10 to 12। सुनते हैं अगला गाना।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: ओहो, क्या बात है यार, क्या गाना है ना ये। मतलब फना मूवी का इतना खूबसूरत गाना, बट आई रियली नेवर थॉट कि आमिर खान की आवाज इतनी रोमांटिक हो सकती है।
2: हाँ, शायरी तो हर इंसान से निकलती है, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे नॉन रोमांटिक हो।
1: बट वो बेस जो है ना आवाज में, दैट थिंग, दैट इज समथिंग, दैट इज समथिंग दैट यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट। वो जब बेस आता है आवाज़ में, तब जो है ऐसे फील आता है, और वो फील मुझे लगता है आमिर खान ने बिल्कुल दिया। बट यही आवाज़ जो है कयामत से कयामत तक वाले मूवी में, आई डोंट थिंक इतना बेस था।
2: नहीं नहीं, तो ऑफिस तो आदमी तो बिल्कुल साइंस पे तुमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। मतलब जैसे जैसे आदमी बढ़ता रहता है तो वैसे वैसे इंसान की जो आवाज़ है वो चेंज होती है। एंड प्लस यू नो ऑल दीज एक्टर्स दे गो to these immaculate workshops of you know voice modulation so definitely. जब वो पढ़ते हैं, सीखते हैं, और जब वो आ ई उ की practice करते हैं, and you know how you need to sort of speak from your epiglottis,
1: I know because मेरा गला तो तैयार है ना। तो मैं हूँ जो है Dabur Honitus, मेरा क्या मेरा गला तैयार है, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको बताया yes मेरा गला तैयार है।
2: That's correct.
1: और मैं contest जीत गई।
2: That's
1: और
2: right.
1: मैं पहुंच गई Big 106.2 के Millennial Weekender।
2: That's right. एंड मिलेनियल वीकेंडर की बात हो रही है, कुछ नॉस्टैल्जिक चीजों की बात हो रही है, एंड आई थिंक बहुत सारे नोट्स बनाए हैं शिरिन ने। शिरिन, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन?
1: मैं बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हूँ तो मैंने नोट्स बनाए हैं। तो गाने में भले ही चल रहा था कि मेरे हाथ में तेरा हाथ है, लेकिन मेरे हाथ में जो है डंडे पड़ते थे टीचर्स के, तो मैंने पनिशमेंट्स की बात की थी। अब पनिशमेंट के लिए कभी कभी टीचर्स जो है स्कूल में वेपन्स यूज करते थे, आप जानते हो
2: रूलर।
1: हाँ, रूलर, ठीक है, रूलर जिसको हम स्केल बोलते हैं, चौक। यस, चौक से क्या है ना कि वो निशान पड़ जाते थे।
2: हाँ,
1: है ना। आपके यहाँ डस्टर यूज करते थे? डस्टर, वी यूज कॉल डस्टर। हाँ, हम लोग यहाँ पे डस्टर, वो भी हम घर से बना के लाते थे।
2: डस्टर फेंकती थी टीचर?
1: हाँ, और क्या, मतलब टीचर का एम अच्छा नहीं था इसलिए आंख वाँख बच गया, लेकिन फेंकते तो जरूर थे। बट दिस वॉज लाइक वन ऑफ द वेपन्स ऑफ चॉइस, यू नो, उनको बहुत अच्छा लगता था ये करने में, बच्चों को टॉर्चर करने में। बट आजकल वो टॉर्चर नहीं किया जाता है, तो सारे टीचर्स जो है दुखी है।
2: अब तो सवाल ही नहीं होता, मतलब आप कैसे किसी को बच्चे आपको कहेंगे कि एक काम करो, स्कूल आप जाओ, अब हम नहीं जाएंगे। That's the kind of kids that we have today.
1: I know. तो आप लोग मुझे बताइए on my Instagram hustle_shirin की आपके टीचर्स कोई ऐसे वेपन्स यूज करते थे। वेपन्स मतलब इतना भी चाकू छुरा नहीं, मतलब ऐसी चीजें जो क्लास में दिखाई देती थी। अगर ऐसा होता था, do let me know on my Instagram। आप सुन रहे हैं Millennial Weekender on Big 106.2 with me, Shirin।

0: was a beautiful track. KK की आवाज मुझे लगता है कि आज भी हमारे दिलों को छू जाती है. And it was so unbelievable now, Ujwal.
1: Absolutely.
0: I can't even think about something like that.
1: And I think millennials तो बहुत ही मतलब touchy हो जाते हैं KK को लेके.
0: I know.
1: Most importantly जो उनके sentiments हैं with MP3 also, उसके लिए भी हम काफी touchy हैं.
0: True, very true. All right, तो हम बात कर रहे थे मिलेनियल वीकेंडर पर बिग 106.2 FM पर जो पनिशमेंट्स हमें मिलती थी उन सब चीजों के बारे में. मुझे लोग जो है DM वगैरह कर रहे हैं, बट आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आजकल
1: थैंक गॉड
0: क्यों यार आपको अपने दिन याद आ रहे
1: थे. नहीं मतलब हाँ, पनिशमेंट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू
0: लिसन टू. ट्रॉमेटिक आजकल की लैंग्वेज में ट्रॉमा देता है.
1: फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, बहुत सॉरी.
0: ऑलराइट, तो अब मैं बात करना चाहती हूँ. देखो आजकल जो है लोगों को टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है पास करने के लिए. बट हमारे टाइम पे टाइम पास होता था, और टाइम पास के लिए हम छोटे मोटे गेम्स खेलते थे. आपको याद है क्या खेलते थे? अंताक्षरी.
1: नोटबुक का आखिरी पेज जो होता था वो भरा होता था, या तो जीरो काटे से, या फिर अंताक्षरियां हो रही है, या फिर हम तो हॉट चपाती भी खेलते थे.
0: हॉट चपाती क्या?
1: मतलब हाथ पे हाथ मारना है, एंड जिसका हाथ एकदम रेड हो गया उसको निकालना पड़ेगा.
0: ओह राइट, ओके, बाप रे क्या है ये, एकदम ब्रूटालिटी. ऑलराइट, तो मैं बात कर रही थी अंताक्षरी के बारे में. अब अंताक्षरी में जो सेट गाने होते थे, म से आया तो मेरे खाबों में जो आए, है ना, ऐसे होता
1: है. फिर माई माई मुंडेर पे,
0: अब वो ऐसे गाते सब, माई माई मुंडेर पे तेरे, इतना जल्दी जल्दी कोई ट्यून में तो कोई गाता नहीं था. ठीक है, अब मेरा ये है कि आज भी अगर हम अंताक्षरी खेले तो हम वही गाने गाते हैं. या आपने कभी सुना है अंताक्षरी? हम पुराने को छोड़ के आजकल के कोई गाने, मतलब खेलता कोई नहीं है, बट अगर खेलें तो वही गाने याद आते
1: हैं. एग्जैक्टली, मेरा वही सवाल था कि आजकल कौन अंताक्षरी खेलता है.
0: और सबसे बड़ी बात यह है कि अंताक्षरी खेलने के लिए किसी ने गाना बनाया है. बैठे बैठे क्या करें,
1: करना है कुछ काम,
0: शुरू करो अंताक्षरी
1: लेके प्रभु का नाम.
0: ये कंपोज किसने किया है और इसके लिरिक्स किसने?
1: आई थिंक अनु कपूर ने, क्योंकि वो अंताक्षरी लेकर आए थे जी पे.
0: ऑलराइट, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अंताक्षरी के अलावा और कौन से गेम्स आपने खेले हैं? ये जो ब्रूटल गेम है जो उज्जवल ने बोला है, उसके अलावा आपने कोई गेम अगर खेला है तो हमें बताइए. डू मैसेज मी, डीएम मी ऑन hustler_shirin. मैं हूँ यहाँ पर बिग 106.2 FM पर मिलेनियल वीकेंडर पे.
1: नेक्स्ट इन लाइन इज नीले निक्की से गाना, द ट्रैक इज आई एम इन लव, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज. द फिल्म वाज अ डिजास्टर, बट ऑफ कोर्स द सॉन्ग इज सो नाइस. टेक इट अवे.

0: चुके हम।
1: ऑलराइट, हम तुम पे मरते हैं का टाइटल ट्रैक सुना है हमने। लता मंगेशकर की आवाज और उदित नारायण की आवाज, बहुत ही खूबसूरत आवाज है। एक दोनों ही लेजेंडरी है ना।
2: एब्सोल्युटली, दोनों एंड कितनी अनकैनी पेयरिंग है दोनों की। एंड उतनी अनकैनी पेयरिंग गोविंदा और उर्मिला की।
1: आई नो, यू कांट इवन इमेजिन, है ना।
2: द थिंग इज दैट गोविंदा ऐसे ऐसे एक्टर्स के साथ पेयर हुए हैं दैट यू कांट थिंक, लाइक अलबेला एक पिक्चर आई थी उसमें गोविंदा वाज ऐश्वर्या राय। गोविंदा और ऐश्वर्या राय साथ में कैसे हो सकते हैं?
1: बट उसमें पता है एक फन फैक्ट भी है कि ऐश्वर्या को जब उस मूवी के लिए कास्ट किया था, शी वाज एक्चुअली न्यू ना टू द इंडस्ट्री, तो उसको तब कास्ट किया था। बट जब तक वो अलबेला की शूटिंग शुरू हुई तब तक शी बिकेम अ स्टार। तो पहले गोविंदा को जो है वेट नहीं करना पड़ता था, ऐश्वर्या को वेट करना पड़ता था। बाद में ऐसा हो गया कि ऐश्वर्या को जो है टाइम नहीं था और गोविंदा को वेट करना पड़ा।
2: तो चीची को तो वैसे भी आदत है, मतलब सबको वेट करवाने की। बात कर रहे हैं मिलेनियल वीकेंडर की, एंड शिरिन हैज गॉट अ लॉट ऑफ नोट्स दैट शी वांट्स टू टॉक अबाउट।
1: यस, तो हम लोग बात कर रहे थे अंताक्षरी के बारे में इससे पहले कि हमने गाना सुना। तो अब देखिए, अंताक्षरी ठीक है, लेकिन कभी कभी ना जैसे गाने मुझे अगर स्टेज पे गाना था, कोई कॉम्पिटिशन हो, तो मैं उसके वर्ड्स कैसे लिखती थी। आई यूज टू लिसन टू द कैसेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन और लिख लेते थे। कुछ कुछ वर्ड समझ ही नहीं आते, तो उस टाइम पे हम लोग वर्ड्स कहीं से देख भी नहीं सकते, गूगल पे डाल दिया मिल गया, ये सब तो था ही नहीं।
2: Correct.
1: तो कुछ कुछ गलत भी गाते थे। जैसे वो गाना था, मैंने गाया था, मधुवन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, तो उसमें आता है ये जो सेंटेंस है इसमें मेरे को क्या समझ में आया, मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले और मैंने यही गाया।
2: Who's कॉपी?
1: आई डोंट नो, किसी को पीस मिले।
2: अच्छा, किसी को पीस
1: मिले। और मैं सोच रही थी ये कौन सा पीस मिला है उसको। एंड यू नो व्हाट, कंपटीशन में मैंने ऐसे ही गाया और मेरे को फर्स्ट प्राइज भी मिल गया। क्योंकि मुझे लगता है कि जज को भी नहीं पता था कि कौन सा पीस है ये। ठीक है,
2: आई थिंक अगर हम बात करें, बहुत सारे मिलेनियल गाने ऐसे हैं जिसके अगर हम लिरिक्स पे चले जाएं तो सुनाई कुछ और देते हैं और दिखाई कुछ और देते हैं और सच्चाई उनकी कुछ और होती है।
1: I know. तो वही, और वो डांस भी ऐसा था ना ग्रेसी सिंह का कि उसमें लगता था कि उसको पीस ही मिला है। तो एनीवेज, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने कभी ऐसे कोई ब्लंडर्स किए हैं जहां पे जो है गाना चल रहा है, आपको समझ नहीं आया वर्ड्स, लेकिन आपने बस लिख दिया है जो आपको समझ आया, है ना। आप मुझे बताइएगा hustler_shirin पर। वी आर ऑन बिग 106.2 मिलेनियल वीकेंडर विद शिरिन।
2: दैट्स राइट। अप नेक्स्ट कम्स इन आते आते बहुत ही खूबसूरत गाना रानी मुखर्जी एंड उनके जीजू के साथ अजय देवगन के साथ, द ट्रैक के साथ आते आते फ्रॉम द फिल्म चोरी चोरी। टेक इट अवे।

0: अलका याग्निक की आवाज में, उदित नारायण की आवाज में मेरा मन गाना। ओह, अनदर फ्लॉप मूवी लेकिन हिट गाना।
1: शिरिन और उज्जवल के साथ हैं बिग 106.2 पे, वी टॉकिंग अबाउट मिलेनियल मेमोरीज। कुछ नॉस्टैल्जिक एपिसोड पे हम जाते हैं, कुछ नॉस्टैल्जिक रास्तों पे जाते हैं, एंड शिरिन लेके आती है बहुत सारे ऐसे ट्रिविया और एनेक्डोट्स आपके लिए। एंड अब क्या है,
0: अब मेरे पास जो है वो ये बात है कि शोज इतने सारे होते थे मिलेनियल टाइम्स। आपको याद है कोई शो जो आप देखते थे उस टाइम पर?
1: बहुत सारे, मतलब ये तो हमारा By default plug-in था, हाँ। क्योंकि मम्मी देख रही है तो हमें भी देखना
0: exactly.
1: है, we don't have a choice.
0: But वो जो सारे सास बहू वाले ना, वो तो थोड़े बाद में आए थे, मुझे लगता है या तो वो parallelly चल रहे थे शायद। But there was a show called Just Mohabbat.
1: Oh yes, don't terrify, simply clarify, Just Mohabbat,
0: Just Mohabbat.
1: Yeah, I love that show.
0: आपको पता है वो गाना किसने गाया है? कौन नहीं समझ सकता ना वो केके ने गाया। सो दैट स्टाइल एंड दैट अमेजिंग वॉइस दैट ही हैज। तो जस्ट मोहब्बत वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, मुझे लगता है कि उस टाइम पे अहेड ऑफ इट्स टाइम्स था एक्चुअली, है ना? 100%
1: इनफैक्ट इवन द कमर्शियल्स, इवन द जिंगल्स,
0: ट्रू,
1: वो भी दे वर वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। एंड आई गेस ये सारे जिंगल्स मेरे ख्याल से केके ने गाए।
0: या या, ट्रू ट्रू। एंड देन देयर वाज अ शो कॉल्ड शरारत, सुनिधि चौहान ने गाया उसका टाइटल सॉन्ग।
1: okay.
0: और ये था वो जिन होती थी और उसकी मम्मी भी जिन नहीं, मतलब क्या,
1: फरीदा जलाल,
0: हाँ राइट, वो दादी बनी हुई थी, राइट, या दैट वाज वन। देन जैसी जैसी कोई नहीं,
1: मोना सिंह,
0: आई नो, एंड दैट वाज वन। देन क्योंकि सास भी कभी बहुत थे, सब जानते हैं, बट मेरे घर पर पापा मम्मी दरवाजा बंद करके देखते थे द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। ये एक इंग्लिश शो था जो किसी को देखना अलाउड नहीं था, आई डोंट नो व्हाई, बट व्हेन आई सॉ इट नाउ इट्स एक्चुअली ओके यार। पता नहीं पापा मम्मी किस बात से डर रहे थे।
1: आई थिंक देयर वाज जस्ट टू मच डिसेंसी एट द सेम टाइम, देयर वाज जस्ट टू मच एक्साइटमेंट ऑफ वाचिंग समथिंग दैट यू ऑलवेज यूज्ड टू फैंटेसाइज दैट प्रोबब्ली वी वुड बी वाचिंग इट वंस अपॉन अ टाइम इन आवर लाइफ।
0: तो आई थिंक, या आई नो, आई नो। एंड देन देयर वाज अ शो कॉल्ड कसौटी जिंदगी की, जो कि बहुत ही फेमस था। यस, एग्जैक्टली। अब उसमें जो है कोमोलिका जब आती थी तो एक म्यूजिक बजता था, मिका, है ना? आपको पता है वो मिका किसने गाया है? निका, यार निका, यू नो हु इट इज? सुनिधि चौहान। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला यार, दैट्स सो अमेजिंग, नो?
1: आइकॉनिक आवाजें हैं, आइकॉनिक बातें हैं, और बहुत सारी मेमोरीज हैं हम लोगों की विद ऑल दीज सॉन्ग्स।
0: यस, एग्जैक्टली। तो आप लोग जो हैं, हमारा जो ये शो है मिलेनियल वीकेंडर 10 to 12 हर सैटरडे को सुन सकते हैं बिग 106.2 FM पर। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग।
1: दिल क्या करेगा टाइटल ट्रैक, काजोल कम्स इन अगेन येट अगेन विद अजय देवगन येट अगेन, साथ में महिमा चौधरी थी, उसी फिल्म का टाइटल ट्रैक, अलका याग्निक की आवाज़।

0: Bollywood hits non-stop. The part of the Big Weekender. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The songs that raised us, the stories that stayed with us. Your weekend throwback begins now. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: जहर का गाना वो लम्हे वो बातें आजकल भी इतना ये गाने को सुनने को मिलता है। आई थिंक सो मेनी रिमिक्सेस ऑफ दैट।
1: एब्सोल्युटली, ये गाने ऐसे हैं यार, ये तो कल्ट गाने हैं। आप इनका जितना मर्जी रीमिक्स बना दो, आई थिंक 10 टाइम्स भी रीमिक्स बना दोगे तब भी गाने वैसे के वैसे ही नहीं।
0: सो ट्रू, सो ट्रू। ऑलराइट, तो अब जो है ये हमारे जाने का वक्त हो गया है, बट उसके पहले एक और छोटा सा जो है मिलेनियल फैक्ट एनेक्डोट में देके जाना चाहूंगा।
1: मिलेनियल फैक्ट बाय शिरिन।
0: यस, अच्छा ये बताइए मुझे कि आप एज अ चाइल्ड उज्जवल, Did you have the hobby of collecting things? कुछ भी हो सकता है।
1: हाँ, yes.
0: हाँ, क्या चीजें कलेक्ट करते
1: हैं? Tazos.
0: Ah, I know Tazos, right. वो Tazo कलेक्ट करने के लिए खाते थे ना।
1: और एक और, trump cards.
0: Yes, trump cards, yes. और you know, there was something called stamp collection for kids who are like थोड़े से you know बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई टाइप के geeks जो है ना, वो लोग करते थे stamp collection, जैसे मेरा भाई करता था। And I did not know it is called philately.
1: Philately.
0: Yeah, that's the term they use for stamp collection.
1: It's the habit of
0: stamp collection. An act is called philately. Yeah, I didn't know this. So stamp collection, मेरा भाई करता था, मैं भी उसको थोड़ा सा show off कर देती थी कि हाँ मैंने भी collect किया करके, पता नहीं उसको कहाँ से मिलता था। Then there's something called coin collection, जो दूसरे दूसरे देशों को हम collect करते हैं, and that is called numismatic collection.
1: Numismatic.
0: हाँ, comes from numeral.
1: Okay.
0: Yeah, numismatic collection. Okay. तो ऐसे ही कार्ड कलेक्शन, जैसे आपने बोला Tazos कलेक्ट करते हैं कार्ड, मतलब उसका मेरे को कोई टर्म नहीं मिला, लेकिन ये बहुत सारे
1: कार्डो सोलोस कलेक्शन
0: हो सकता है, हम ही बना देते हैं ना। और उसमें जो है हम सचिन तेंदुलकर की फोटो और यू नो जो भी फुटबॉलर्स की फोटो वगैरह ऐसे वाले

0: कलेक्ट करते थे. आजकल एक्टर्स, आई मीन आजकल तो मुझे नहीं लगता कोई भी कलेक्ट करता है, बट उस टाइम पे इवन एक्टर्स एक्ट्रेसेस की कलेक्ट करते थे. लाइक ऐश्वर्या राय की मिल गई, माधुरी की मिल गई, तेरे पास कौन सा है, मेरे पास ये, मेरे पास ऐश्वर्या की दो है, मेरे को एक दे दे एक्सचेंज एंड ऑल दैट, यू नो, वो सब होता था. सो आई थिंक आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट?
1: सो आई थिंक वन थिंग जो मिलेनियल वीकेंडर हमें सिखाता है इज टू कलेक्ट मेमोरीज. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सोशल मीडिया के बीच में अगर कभी आपको वक्त मिले तो वो इम्पॉर्टेंट समय है टू कलेक्ट, जैसा हम कलेक्ट करते थे अपने टाइम पे व्हेन वी वर मिलेनियल्स, द एक्चुअल मिलेनियल्स. टाइम टू रैप इट अप.
0: टाइम टू रैप इट अप. तो प्लीज डू कीप लिसनिंग टू मिलेनियल वीकेंडर विद मी शिरिन एंड उज्ज्वल. शायद इस बार ही मेरे साथ रहेंगे, अगले बार से शायद नहीं रहेंगे.
1: थोड़ी मैंने 50% ट्रेनिंग इसको दे दी है, बाकी की ट्रेनिंग आई नो
0: ऑन बिग 106.2 FM. और अब चलते हैं, अगला गाना सुनते हैं, एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक. अंटिल देन स्टे स्टाइलिश, कीप स्माइलिंग.

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Non stop music from the biggest movies. The Big Weekender.
3: All about the hits.
0: Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: बॉलीवुड ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Non-stop music from the biggest movies. The Big Weekender. All about the hits. Big 106.2. The Beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स वीकडेज 10 AM टू 2 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae Millennials Unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।